0: ऐसी भी है
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: your bags. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द न्यू ट्रेलर हैज बीन रिलीज जिसका नाम है प्रेम कीटाणु फिल्म जो रिलीज होने वाली है 2nd of October को एंड हर कोई ना अपनी टीनेज में इसमें तो गुजरता है ये कीटाणु जो है आपको काटता ही यार हर टीनेज में प्यार
3: उसने हाँ बोला या नहीं
4: नहीं यार
3: बस स्माइल किया स्माइल का मतलब हाँ ही है ना स्माइल का मतलब हाँ ही है ना स्माइल का मतलब हाँ ही है ना
5: तेरा ना प्यार मोहब्बत को लेकर जजमेंट कॉलेज टाइम से ही बहुत खराब रहा
3: है मैं कॉलेज का विशाल नहीं रहा ये वाली अलग है यार
2: और फिर एंट्री होती है एक और इंसान की
3: समझने लगा हूँ मैं लड़कियों को
5: बड़े बड़े तुर्रम खा कर निपट गए यहाँ पर आज तक लड़कियों को कोई नहीं समझ पाया
3: कैंपस में तुम्हें कई कंपनियों के ऑफर मिले होंगे ना फिर ये नल्ली कंपनी क्यों ज्वाइन की तुमने
6: वो सिर्फ जीत की वजह से
4: रंजीत सिंह खुश हुआ पता नहीं तुम दोनों को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव मेट यू बिफोर
3: सर छोड़ो ना
7: Of course, now I remember.
8: याद है तुम्हें मैं दो बैक बेंचेस के बारे में बता रहा था यार यही तो है वो नकलची डुओ
3: क्या अजीब बंदा यार
9: ये मेरे रडार में है भाई
10: वो जीत जीत जीत रंजीत से रॉयल
5: हर बात पे जीत रंजीत जीत प्यार करती है उससे
2: अपार शक्ति खुराना वीर पहाड़िया स्टारर फिल्म प्रेम कीटाणु रिलीज होने वाली है 2nd of October को एंड यू नो देयर इज वन लाइन व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड इन द ट्रेलर
9: तो लाइफ में इनको टाइम देगा ना बोलेगी पैसा चाहिए पैसा देगा तो बोलेगी टाइम नहीं दिया और दोनों दे देगा ना तो बोलेगी स्पेस चाहिए
2: Actually, this was a little too relatable. What do you think about it? Call karo mujhe 800-1062 pe. Kaisa laga trailer aapko? 2nd of October ko release ho jayegi ye film. Apar Shakti Khurana aur Veer Pahadiya. Starer film. Naam hai Prem Kitanu. Wonderland. Keep it locked to Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड दुबई स्कूल मंथ्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड वन ऑफ द सिटीज मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट जिसकी मैं बात कैसे ना करूं यार. इट्स कमिंग बैक दुबई मेडिकल गार्डन 8 अक्टूबर को खुल रहा है वापस. इट्स द सीजन 15th. 150 मिलियन फ्लावर्स होंगे विद ऑफकोर्स ब्रांड न्यू डिस्प्लेज. और UAE रेजिडेंट्स को स्पेशल टिकट प्राइसिंग भी मिल सकती है स्टार्टिंग फॉर 50 dirhams फॉर किड्स एंड 70 dirhams फॉर एडल्ट्स. एंड जस्ट नॉट दैट, क्योंकि इतना कुछ है घूमने को दुबई में, मेडिकल गार्डन प्लस बटरफ्लाई गार्डन की अगर आप कॉम्बो टिकट लेते हो दैट्स गोना बी 140 dirhams. इट्स टाइम वी डू. इतना कुछ है घूमने के लिए तो यार मैं कैसे रुक सकती हूँ. The song coming your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2. It's time ke hum ab ghoomi ghoomi par jayein.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: That's right.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड द न्यू फिल्म द वीवान का नया गाना रिलीज हुआ है यार जिसका नाम है ठुमक ठुमक. बट अगर आपको ठुमक ठुमक से ये याद आता है दिस वन इज अ डिफरेंट वन. इससे आपको ये याद आएंगी
3: आज की रात मजा उसने का आंखों से.
2: तमन्ना भाटिया की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन विद दिस सॉन्ग ठुमक ठुमक अनदर

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:05।
1: Bollywood.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
2: The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज योर चांस टू गो टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप बिग चेक इन टू जर्मनी. करना कुछ नहीं है, बस आपको मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, खेलेंगे हम एक जीके का सवाल, जीके कॉन्टेस्ट, नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स गोइंग टू बी द जर्मन नॉलेज. और क्योंकि हम इतनी खाने पीने की बातें करते हैं, दिस टाइम दिस क्वेश्चन इज गोना बी अराउंड कुछ खाना. 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर. ट्रिप वाले सॉन्ग्स शुरू हो चुके हैं, नंबर रिपीट कर देती हूँ 0543091062.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG.
1: Ethnic partner, Bowery and Kora.
0: Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! Khush hua!
3: Three things that are white in color and you can eat.
4: Kheer, dahi, doodh.
3: Very nice. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
4: हाँ हाँ बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
3: हाँ बना तो नहीं रहे हो ना मुझे. फिलहाल तीन ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
4: Watching cricket over the phone every time.
3: ओए टाइम खत्म. थ्री रोमांटिक निकनेम्स जो आपने अपनी डार्लिंग वाइफ को दिए हैं.
4: डम्बो, जानू, शोना.
3: ओए सो क्यूट. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
4: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ.
3: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
4: है? वो है नहीं, वो नाम सिर्फ, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
3: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए.
4: आज हम लोग लंच पे जा रहे हैं.
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड बट
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है.
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
0: यू आर लिसनिंग टू द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
9: You know, UAE winters are coming. जब आपको अपनी बैल्कनीज में विंडोज में ना पैरट्स दिखने शुरू हो जाते हैं. वेदर इज इन फैक्ट चेंजिंग. 37 डिग्रीज आउट देयर विद 46% ह्यूमिडिटी.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज मैंने कॉल किया है अखिल को. हाय अखिल.
3: हाय,
2: कैसे हैं आप?
3: ठीक हूँ.
2: वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कॉल कि एकदम नर्वस हो गए हो आप?
3: फिर मैं ड्राइविंग कर रहा था, फिर अचानक कॉल भी आ गया तो फुली नर्वस.
2: मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी साइड पर है, आप जर्मनी चल सकते हो हमारे साथ.
3: Maybe, yeah.
2: क्या करते हो अखिल आप?
3: मैं यहाँ पे I'm working on a IT company, as a sales person.
2: भाई मैंने तो सुना है कि सेल्स की जॉब बहुत मुश्किल होती है. मैं तो पूछ भी नहीं सकती why do you need a vacation.
3: मुश्किल है अभी.
2: अच्छा, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी?
3: छुट्टी मिल जाएगा.
2: मिल जाएगा. अरे
3: 100%.
2: वेकेशन के लिए तो वक्त ही वक्त है. ओके अखिल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? जी के क्वेश्चन, आपको उसका जवाब देना है. लेट्स सी आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है?
3: जी.
2: ओके, सो व्हाट पॉपुलर जर्मन स्वीट ट्रीट इज अ सॉफ्ट फ्राइड डो पेस्ट्री व्हिच इज वेरी सिमिलर टू अ जेली डोनट. मैं ऑप्शंस देती हूँ. ऑप्शन ए बर्लिनर, बी चुरोस, सी मैकरून.
3: अगेन प्लीज.
2: बर्लिनर, चुरो और मैकरोन.
3: बी
2: चुरोज. एक और गैस कर सकते हो यार.
3: देन फर्स्ट वन.
2: पहले क्यों नहीं हुआ फर्स्ट वन?
3: मेरे डाउट था इसके लिए.
2: डाउट था, अब हमें भी डाउट है आपका जर्मनी जाने के लिए. बट यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स द बर्लिनर. लेकिन आपने कभी खाया है ये?
3: नहीं खाया मेरे खाने के अभी वहाँ पे जाके.
2: नाम लेते ही जो क्रेविंग शुरू होती है खाने की कि अभी खिला दो.
3: वहाँ पे गया, वहाँ पे लोकल फूड कौन सा है वो चेक करेगा फर्स्ट. सो आई विल ट्राई दैट वन.
2: आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है वैसे?
3: नॉर्मली आई लाइक आइसक्रीम्स. यूजुअली आई लाइक द गुलाब जामुन. माय फेवरेट स्वीट, या ऑफ कोर्स
2: गुलाब जामुन प्लस आइसक्रीम का कॉम्बो कभी ट्राई किया है?
3: ट्राई किया था.
2: अच्छा बात है ना, इसे जर्मनी में जाके ये सब ट्राई करना, फिर पता लगता है कि हम घूमने आए हैं. कांग्रेचुलेशंस अखिल, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है टू बिग चेक इन टू जर्मनी. लेट्स सी ओके, आप जर्मनी जाते हो हमारे साथ कि नहीं. बट द फर्स्ट राउंड इज क्लियर. कांग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू सो मच.
2: ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे.
3: थैंक यू वेरी मच. या
2: इफ यू वांट टू गो टू जर्मनी विद अस टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप, करना कुछ नहीं है, बस मैसेज करना है हमें 0543091062 पर.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: you shake that thing, you really make the bell ring, and they go ring ding ding.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड creditmarket.ae आपको ऑलरेडी पता है Alfred from insurancemarket.ae. Now Alfred can actually help you compare credit cards, personal loans and mortgages too. करना कुछ नहीं है, बस आपको विजिट करना है creditmarket.ae या फिर कॉल करना है 800 Alfred पर, और ये करते ही आपको पता लग जाएगा. फाइनेंसिस की थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए यार, एंड creditmarket.ae एग्जैक्टली इज दैट पाठशाला. Keep it locked to Big 106.2. The song's coming up your way after this track.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 36 degrees out there with 52% humidity levels and कल 23rd September है, कल ये temperature और गिरेगा। Officially weather's gonna change tomorrow 4:05 AM से, ऐसा बताया गया है, लेकिन weather change होने की हल्की हल्की खुशबू तो आ रही है यार।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. और मैं स्कूल के दिन याद कर रही थी यार, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन टिफिन में जो भी कोई अच्छा खाना लेके आता था ना यार, मैं तो उसी के साथ जाके बैठ जाती थी. वेल, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि इंडिया में एक स्कूल में अगर आप टिफिन में मेथी लेकर आते हो, मेथी ओके फेनुग्रीक, तो आपको 20 रुपीज फाइन है. यार मेथी तो कितनी प्यारी सी अच्छी सी लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, उस पर फाइन क्यों लगा पता नहीं. लेकिन व्हाट इज दैट वन लंच बॉक्स आइटम जिसपे आपको लगता है कि यार फाइन लगना चाहिए. अगर ये आप लंच में लेकर आ रहे हो, प्लीज़ ये डिजर्विंग नहीं है. आप इसको वापस लेकर जाओ या तो फाइन पे करो. फॉर मी इट हैज़ टू बी पोटैटो की सब्जी विद रोटी. इट्स जस्ट ऑल कार्ब्स यार. एंड वो इंसान जो ऐसे जमे हुए नूडल्स लेकर आता था लंच बॉक्स में, कॉल करो मुझे 800-1062 पर. बताओ मुझे कि व्हाट इज दैट वन लंच बॉक्स आइटम डिश जो आपको लगता है कि स्कूल में लेके जाने पर या लेकर आने पर फाइन लगना चाहिए. टोल फ्री नंबर पर कॉल करो 800-1062. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो। नाम या दाम?
3: नाम।
4: Money follows, my brother.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था एक क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन लंच बॉक्स डिश दैट शुड बी फाइन. लेट्स सी हूज इन द कॉल. हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाय, कौन बोल रहे हैं?
2: हाय, मैं दीक्षा बात कर रही हूँ.
1: यस दीक्षा, पहले तो मुझे बताओ आपकी फेवरेट लंच बॉक्स डिश क्या है?
2: मेरी फेवरेट लंच बॉक्स डिश है आलू के पराठे अचार के साथ.
1: वाओ, और दही वो तो रह गई.
2: अरे हाँ.
1: अच्छा,
2: में तो वो गर्म हो जाएगी ना.
1: अब वन लंच बॉक्स डिश दैट यू थिंक शुड बी फाइंड.
2: मुझे लगता है कि टींडे शुड बी फाइंड.
1: टींडे,
2: व्हाट
1: इज टींडे?
2: देसियों के अलावा किसी को पता कि टींडे क्या है? बट एक बार मुझे यहाँ से स्कूल में मैं टींडे लेकर गई, लाइक मुझे पता नहीं था मेरे टिफिन में क्या है, और उस दिन ना तो मेरे किसी दोस्त ने मेरा टिफिन खाया और ना मैंने खुद मेरा टिफिन खाया, और पूरा दिन मेरा मुंह बना रहा. मेरे से लड़ाई हुई वो अलग,
1: क्योंकि दोनों टींडे लेके आए थे.
2: Yes.
1: What is one more, right? टींडे की बहन
2: तोरी.
1: तोरी, तोरी घिया टींडे खाते नहीं है, मतलब दीक्षा विल आल्सो बी लाइक टींडे आ गए तो मैं तो जा रही हूँ. आज क्या लेकर आए थे लंच में आप?
2: आज मैं लेकर आई थी पुलाव.
1: पुलाव, ये तो अच्छी डिश है यार. That's actually nice. You tell me, call करके 800-1062 पे, what is that one lunchbox dish जो आपको लगता है यार इस पे fine लगना है, ये deserve नहीं करती lunchbox में आने की. 800-1062 is the number. Until then, keep it locked to Big 106.2. Big.
0: आप सुन रहे हैं Big 106.2. Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: ये सुनो,
5: आप कौन से सेक्टर में काम करते हो?
6: I work with real estate into customer service.
5: So which of these terms that I told you on the radio have you used or people have used on you? Let's do a refresher. Has somebody used seaweed at work, which means people just keep floating?
6: No, actually not. Yeah. I think I have heard mostly, I mean, we use grapevine a lot here.
5: Grapevine?
6: Which is one of the oldest terms.
5: Haan, pretty matlab, much. People are into gossip. People are at the
6: yes.
5: water cooler yes. mode that they should be on at the
6: yeah.
5: desk.
6: And then you have the root of the grapevine and the branches and the trees of the grapevine and the fruits ultimately.
5: Achha, pura anatomical structure aa jata hai pura. Haan? It's like
6: puri tree bana diya hai fir uski.
5: Very nice, yaar. To kya matlab hota hai? Uska branch, root to samajh gaya ki iski jad. But what about the ब्रांच वंच क्या है?
6: ब्रांच मतलब फिर उसको स्प्रेड किसने किया कि कहाँ से कहाँ पहुंची बात.
5: अच्छा, और फिर ब्रांच मैनेजर, फिर सीईओ, सीटीओ, इस तब तक बात पहुंचती है.
6: और फाइनली फल ये निकलता है कि एक्चुअली इज इट अ ट्रू थिंग और अ फॉल्स थिंग, तो वो उसका लास्ट का फ्रूट निकलता है.
5: लेट मी गेस, 90% ऑफ टाइम इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, व्हिच इज व्हाई इट इज अ ग्रेपवाइन. बट बट व्हिच इज योर फेवरेट? माय फेवरेट इज आल्सो सेंसर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपके काम पे भी होंगे जो कि तभी काम करते हैं जब देयर इज समबडी क्लोज बाय.
6: Absolutely, I think my favorite would also be sensor.
5: Yeah.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: Hey, jaldi hata, tera khata na. Chal hata.
8: Arey,
7: jaldi hata, sunna.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: Traffic is building up Al Sufu and Dubai Media City wali side. Russell Khur par agar ho, wahan par bhi aapko achhi khasi congestion mil jayegi. With that, Business Bay and Nadal Shiba par bhi evening rush shuru ho chuka hai. If you are heading towards Dubai International Airport, extra time leke chalna, wahan par bhi achhi khasi traffic congestion hai. Kahin aur phase ho, let me know, call karke 800-1062 par.
9: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बात कर रही हूँ सेल्फ ड्राइव के बारे में. यू कैन एक्चुअली नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. मतलब पूरे के पूरे साल में आपका स्वैग चलेगा. विजिट selfdrive.ae/tnc अप्लाई, वहां पर जाकर जॉन सी भी आपको गाड़ी लीज पर लेनी है. चेक दैट आउट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. कल मिलती हूँ फिर से द बिग मिक्स 1 to 5.
1: Hey. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it.
0: Top-notch tracks coming up your way. Until then, keep it locked to Big 106.2. Big.

0: जा ही रहे हो यार, तो स्वैग के साथ जाओ ना, सेल्फ ड्राइव के साथ।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आए रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:06।
1: Bollywood.

Good evening. This is the Big Thrill. Mansi sounding a bit like Himesh Reshamya. I don't know what is up with this flu. ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? मतलब ऐसा तो कोई लड़का भी मेरे पीछे लाइफ में कभी नहीं पड़ा जितना ये नज़ला जुखाम एंड फ्लू पड़ चुका है. दो द सीजन द वेदर इज चेंजिंग, सो मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो ऑफिस में आछू आछू करते हैं विदाउट एनी टिश्यू विदाउट एनी मास्क. फिलहाल व्हाइल यू आर हेडिंग बैक होम व्हाइल स्टक इन द ट्रैफिक जैम, वी जैम हियर विद द कारियोकी. गाना आया ना आया, अगर आपको गाने का शौक है देन दिस इज इट. आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी. एंड आज का ये जो गाना है दिस इज अ क्लासिक. मूवी का नाम था यारा दिलदारा. 1991 की मूवी है. जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर्स. जतिन ललित का ये डेब्यू एल्बम था. नहीं कि गाना इस एल्बम का कमाल है. इनफैक्ट द मेन लीड आसिफ शेख, जिन्हें हम इस मूवी से नहीं बट भाभी जी घर पर है शो से जानते हैं. बट आई हैव टू से मूवी कुछ खास बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई बट द म्यूजिक वॉज फैंटास्टिक. Let me see how many of you remember this song. I don't think so. ये बहुत difficult होने वाला है.

90s के फैंस ने ऑलरेडी गेस कर लिया है। वैसे अगर आपको ये गाना याद आ गया है, यू वांट टू सिंग दिस सॉन्ग, 800-1062 इज द नंबर, डायल। वी आर कैरियोकिंग राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। कैरियोकी।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2 brought to you by selfdrive.ae.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: One big ticket brings many chances to win.
4: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
3: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly.
6: New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMIs starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain and Fujairah today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: The Big Jill.
7: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
8: जी मुबारक हो, 1 घंटा 12 मिनट का डिले जो है वो आपको मिलने वाला है इस वक्त अगर आप है शेख जायद रोड पे 1 घंटा 12 मिनट। अभी पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मोटिव टू मुहेसा, इट इज़ अ बिट पैची, नॉट एज बैड एज शेख जायद, बट काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ट्रैफिक ये फेस्टिवल सिटी नादलहमर, दुबई क्रीक हार्बर मूविंग वेरी वेरी स्लो, रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया अगेन पैक्ड, अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के पास भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, हैवी ट्रैफिक इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी, प्रोडक्शन सिटी, टेकिंग हेसे स्ट्रीट, ऑल्सो स्लो मूविंग दुबई साउथ की तरफ, स्पेशली अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स फुरजान। Anything else you'd like to report, मुझे बताइए 800-1062 पर।
9: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
10: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
0: Big 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill Mansi. एक घंटा 10 मिनट का डिले चल रहा है. स्लो मूविंग ट्रैफिक है. शिकजाद की मैं बात कर रही हूँ. वाइल यू स्टक इन द ट्रैफिक जैम, वी जैम हियर विद द कारियोके. एंड जॉइनिंग अस इज अनु. अनु कहाँ अटकी है इस वक्त?
2: Not really. I'm not stuck in the traffic. Thankfully, it's the signal because of which I'm stuck. I should move soon.
1: देखो ज़िंदगी में रेड के बाद ग्रीन सिग्नल आता है. अनुजी वैसे आप करती क्या है?
2: I'm a homemaker.
1: Very nice. You're a generational shaper, and I'm assuming you're a brilliant singer. You're one of those जो सुबह सुबह breakfast बनाते हुए गुनगुनाती होगी किचन में.
2: I do a bit of gungunawing, but
1: gungunawing.
2: I am not. Yes.
1: नहीं यहाँ पे कौन सा कोई प्राइज मनी मिल रहा है. बिंदास गाओ, नो स्ट्रेस एट ऑल.
2: Karaoke.
1: All right, Anu, this is your track.
2: Thank you. Tere de sanam mar mitte ke hum aa meri zindagi

0: तेरे ही दम पे होगी,
1: ओहो
0: दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी,
1: आपने गाना सुना था, मे बी समवन जिसके साथ ये गाना सुना था.
0: Ages, बहुत बहुत सदियाँ बीत गए, it's like a really long time. It's somewhere inside and then it just pops out.
1: I know, right? And this is such a classic. Yeah. So do you sing for your husband?
0: Correct. Absolutely. My husband, I don't know. I just sing when some good song plays.
1: Wow, I suddenly just...
0: If he's around, he listens
1: yeah,
0: to
1: I
0: it.
1: Just suddenly felt like I spoiled your mood. Unka naam lekar. Husband, I don't know. I just sing.
0: He listens to me, by the way.
1: He has to. He doesn't have a choice. Yeah, चाहे वो गाना सुने या फिर कुछ और सुने, उसे सुनना पड़ेगा. बट बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस दिस इवनिंग एंड यू आर अ फैंटास्टिक सिंगर.
0: थैंक यू.
1: बाय अनु. दिस इज व्हाट वी डू, वी हैव फन व्हाइल यू आर आउट एंड अबाउट. आप रोड पे हैं, ट्रैफिक में हैं, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं. सो इफ यू लव दिस सॉन्ग, यू'ड लाइक टू सिंग, लेट मी नो 800-1062 पर.
2: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अगर इस साल आपने भी एक भी एनुअल लीव नहीं ली है देन आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू अप्लाई फॉर अ छुट्टी बिकॉज वी टेकिंग यू टू जर्मनी. दिस इज एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप. इनफैक्ट वी हैव एक्सटेंडेड द कॉन्टेस्ट फॉर अनदर टू वीक्स सो दैट आप में से कई लोगों को मौका मिले पार्टिसिपेट करने का. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है प्लीज डू इट राइट नाउ. ऑल यू हैव टू डू इज एकदम फ्री है व्हाट्सएप करना है बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062. विल प्ले अ फन गेम हियर. इफ द रैंडमाइजर पिक्स योर नेम आई विल गिव यू कॉल. फोन उठाना जरूरी है क्योंकि ये कॉल मिस हो गया तो जर्मनी की फ्लाइट मिस हो जाएगी. We'll test your GK, which is your German knowledge. If you manage to give me the right answer, very, very simple. Aap ho jayenge shortlist. One step closer to this fantastic check-in to Germany. But for that, you need to register. WhatsApp karna hai. Agar WhatsApp pe number nahi lag pa raha hai, then head to our Insta handle, which is 106.2 Big FM. You don't want to miss this. Ye hai the big check-in to Germany.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill, Mansi, and we are karaoking here. Joining us is Vajji, and I was telling him that I recently, kuch mahino pehle ek show dekha tha. You know, I love Pakistani dramas. उसमें वज्जी किलर था, सबसे खराब बंदा था, पर ये वज्जी ऐसे नहीं है ना
2: जी? जी बिल्कुल ऐसे
1: है। आप लड़कियों के सिर्फ दिल तोड़ते होंगे, लेडी किलर हैं आप। सो क्यूट, शर्मा रहे हो?
2: नहीं नहीं, शर्मा तो नहीं रहा, लेकिन आपने
1: ये देखो यार, बता बंदों की प्रॉब्लम क्या होती है। They don't know how to take compliments. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लड़कियां लड़कों से एक्सपेक्ट करती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स वो हमें दें, बट हम कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। तो जब आपकी मैं तारीफ कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं रिएक्शन क्या दूँ, है ना?
2: सही बात है।
1: फिलहाल हाउ इज योर ट्यूसडे?
2: बहुत अच्छा रहा आज का दिन।
1: बेस्ट थिंग जो हुई आज आपके साथ, वन थिंग दैट यू वेरी वेरी हैप्पी अबाउट?
2: आज बहुत अच्छा दिन जो था मेरे साथ ये था कि आज ऑफिस में एक पार्टी थी, और वो एक ऐसी पार्टी थी कि बिल्कुल वो कहते ना कि गुप्त पार्टी थी, और वो मेरे लिए दी गई थी।
1: गुप्त पार्टी है, बड़ा मुझे लग रहा है कि वो जो वज्जी टीवी शो में था वैसे ही आप भी कुछ तो नहीं कर रहे हो?
2: नहीं नहीं, ऐसी नहीं थी वो, बस जस्ट लाइक मेरे लिए थोड़ा सा उन लोगों ने एक वो एक एंटरटेनर कह लें आप उसको, ये जो भी कह लें, क्योंकि मैं अक्सर ऑफिस में भी ये गुनगुनाता रहता हूँ। तो
1: वेरी नाइस, फिलहाल आपकी आवाज में ये क्लासिक गाना सुनेंगे, एंड दिस इज अ सॉन्ग दैट आई थिंक वी ऑल लव। सो फिलहाल वज्जी की आवाज में
0: karaoke।

0: इस मूवी का एक और गाना भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना ये मूवी कुछ खास नहीं चली, बट जतिन ललित का डेब्यू हुआ था। मूवी देखी आपने? मैंने नहीं देखी
1: ये मूवी, देखी लेकिन भूल गया।
0: बट गाने बहुत अच्छे थे। दूसरा गाना भी
1: वो
0: हमारी एक्चुअली रिसेंटली आई सॉ मूवी विच वॉज तू या मैं, उसमें ये गाना बार बार प्ले हुआ था। फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने लगा अरे दो गाने बट कमाल गाने इस मूवी के, एंड आपने भी बड़ा अच्छा गाया। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस एंड ड्राइव सेफ।
1: थैंक यू वेरी मच मासी,
0: बाय बाय।
1: हैव अ नाइस डे, बाय।
2: कारियोकी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी 6:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, Mansi, and of course we're playing the 5-second rule and aa chuke hain Zain. Hi Zain, good evening.
2: Hi, hi.
1: To kaise lag gaya na aapko phone, aapko pata nahi tha kahan phone laga rahe aur kahan lag gaya.
2: Nahi, mujhe to first time try kiya na to mujhe laga nahi ki itni jaldi connect ho gaya to.
1: Mujhe phone laga ke pooch rahe kaun bol raha hai. मतलब ये होता है लाइफ में टशन, मेरा ही नंबर और मुझसे ही पूछो कौन बोल रहा है. ज़ेन करते क्या आप?
2: मैं आईटी इंजीनियर हूँ.
1: आईटी इंजीनियर, वेरी वेरी नाइस. मजा आ रहा
2: है
1: कि नई नौकरी ढूंढ रहे हो?
2: वो तो चलता ही रहता है. मजा भी आ रहा है,
1: एम्प्लॉय ऑफिस में कम से कम 3 घंटे लिंक्डइन पे रहता है ना.
2: या करेक्ट.
1: या तो ये मजेदार गेम है, आपको मिलेंगे 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज.
2: ओके.
1: तीन चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. इट हैज टू बी वेरी वेरी क्विक. तो ज्यादा सोचना नहीं है, जो दिल में आए वही जवाब देना है. आप हो हाजिर जवाब?
2: जी.
1: अच्छा,
2: ट्राई माय बेस्ट.
1: ओके, मुझे उम्मीद कम है आपसे बट फिर भी खेलते हैं आपके साथ. ज़ेन कह रहे हैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ, दोबारा इस लड़की को कॉल नहीं करूंगा कभी, है ना.
2: नहीं नहीं यार, मुझे पता लग गया ना, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है तो मैं हर बार जाऊंगा.
1: वेरी नाइस
2: जी.
0: 5 सेकंड रूल. ओह यस.
1: कल करीना कपूर का बर्थडे था तो 3 करीना की मूवीज.
2: रावण.
1: टाइम खत्म. 3 things that are white in color and you can eat.
2: इडली
1: और
2: रसगुल्ला.
1: टाइम फिनिश. 3 ऐसे reasons आप मुझे दीजिए जिससे आप मुझे कन्विंस कर सकें कि यार शादी बड़ी अच्छी चीज है. जीरो reasons है. हुई आपकी शादी?
2: नहीं.
1: करने का मन है? नहीं है
2: अभी तो
1: नहीं. छुट्टी क्या?
2: 50-50.
1: अच्छा, 3 qualities जो आप ढूंढ रहे हैं अपनी होने वाली वाइफ में.
2: sensible, educated
1: और
2: trustworthy.
1: मिली नहीं अभी तक, कहाँ ढूंढ रहे हो? मैट्रिमोनियल पे हो कि मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं?
2: मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं.
1: अरे अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं?
2: नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं ढूंढा, मम्मी पापा तो अपने कॉन्टेक्ट में.
1: अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपकी शादी नहीं होगी. खैर आगे बढ़ते हैं. 3 things दैट आर रेड इन कलर. तीन चीजें आपके कॉलीग्स के बारे में जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं. मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं है.
0: 5 second रूल. ओह यस.
1: बहुत खराब खेला ज़ेन. बट यार इंस्टाग्राम वाली बात बताओ तो कैसे, हाउ आर यू अप्रोचिंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम? जस्ट स्लाइडिंग इनटू देयर डीएम्स?
2: नो, या लाइक आई लाइक देम स्टोरी और समथिंग देन.
1: अच्छा, सो यू सेंड देम अ रिक्वेस्ट एंड वंस दे एक्सेप्ट इट यू जस्ट से दैट लिसन आई वांट टू मैरी यू.
2: नो, ऑफ कोर्स नॉट. फर्स्ट स्टार्ट
1: बताओ ना कैसे, स्ट्रेटजी क्या है?
2: लाइक स्टार्ट विद द बिकमिंग माय फ्रेंड्स एंड देन.
1: लड़की से दिल की बात डायरेक्ट बोलनी चाहिए, जब बोलो दोस्ती तो फिर फ्रेंड जोन हो जाओगे. बहरहाल ज़ेन, बड़ा मजा आपसे बात करके. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. ठीक है, बाय. लाइक आई सेड द गेम साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये इजी नहीं है. अगर आप खेलना चाहते हैं 801-062 इज द नंबर टू डायल.
0: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2 Looking to invest in Dubai real estate? AX Premium Properties presents Dubai Property Utsav. 26 major developers all under one roof. Join us on 26 September at JW Marriott Hotel Marina, Dubai. Enjoy up to 40% off DLD waivers, 2-year investor visas, payment plans from 1,999 dirhams per month, free mortgage consultation, up to 3-year post-handover plans, and up to 50 grams of gold vouchers. One day, endless opportunities. Register now. TNCs apply. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: Holiday Markets.ae. Tbilisi, Georgia, from just 2,000 dirhams, with flights, hotel, and transfers included. Visit holidaymarket.ae or call 800 Alfred.
0: Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो,
5: आप कौन से सेक्टर में काम करते हो?
6: I work with real estate into customer service.
5: So which of these terms that I told you on the radio have you used or people have used on you? Let's do a refresher. Has somebody used seaweed at work, which means people just keep floating?
6: No, actually not. I think all I have heard mostly, I mean, we use grapevine a lot here.
5: Grapevine?
6: Which is one of the oldest terms, pretty much.
5: People are into gossip. People are at the water cooler mode that they should be on at the desk.
6: And then you have the root of the grapevine and the branches and the trees of the grapevine and the fruits ultimately.
5: Achha, pura anatomical structure aa jata hai pura, haan? It's like...
6: Poetry bana diya phir uski.
5: Very nice, yaar. To kya matlab hota hai? Uska branch, root to samajh gaya ki iski jad. But what about ब्रांच
6: मतलब फिर उसको स्प्रेड किसने किया कि कहाँ से कहाँ पहुंची बात.
5: अच्छा, और फिर ब्रांच मैनेजर, फिर सीईओ, सीटीओ, इस तब तक बात पहुंचती है.
6: और फाइनली फल ये निकलता है कि एक्चुअली इज इट अ ट्रू थिंग और अ फॉल्स थिंग, तो वो उसका लास्ट का फ्रूट निकलता है.
5: लेट मी गेस, 90% ऑफ टाइम इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, व्हिच इज व्हाई इट इज अ ग्रेपवाइन. बट व्हिच इज योर फेवरेट? माय फेवरेट इज आल्सो सेंसर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आपके काम पे भी होंगे जो कि तभी काम करते हैं जब देयर इज समबडी क्लोज बाय.
6: Absolutely. I think my favorite would also be sensor.
0: Yeah. Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
1: It is 35 degrees. Officially, summer's ka the end kal hoga. Low jayega around 31. Filhal humidity hai 54% par.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: फिलहाल स्टूडियो में टेम्परेचर जर्मनी जैसा ही है. आई डोंट नो हु इज प्लेइंग विद द एसी आउटसाइड, बट सर्दी का मजा तो यूरोप में आता है. एंड वी आर टेकिंग यू देयर. इट्स गोना बी सो मच फन. वी माइट गेट टू सी सम स्नो, क्रिसमस मार्केट्स, एंड ऑफ कोर्स ग्रेट कंपनी. यू नो दीस चेक-इन्स आर सो मच फन. सो इफ यू वांट टू ट्रैवल विद अस, बहुत सिंपल है. एक व्हाट्सएप करना है, वो भी फ्री है. बिग चेक इन अपना नाम टू 0543091062. अगर रैंडमाइजर ने आपको पिक करा, आई विल प्ले अ फन गेम विद यू. जीके विच इज जर्मन नॉलेज अगर आपकी ठीक ठाक है, वरना चैट जीपीटी तो है ही, उसके बिना तो गुजारा नहीं है. इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, आप हो जाएंगे शॉर्ट लिस्ट. एंड देन फिंगर्स क्रॉस. मैं ना ओम शांति ओम को बहुत मानती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी. एक डायलॉग उस मूवी से मैंने अपनी जिंदगी से चिपका लिया है कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है. तो बस शॉर्टलिस्ट हो जाओ और उसके बाद यूनिवर्स से मांगते रहो 100% मिलेगा. फिलहाल शॉर्टलिस्ट होने के लिए व्हाट्सएप करना जरूरी है. अगर यहां नंबर नहीं लग रहा है देन यूनिवर्स सोशल मीडिया पे भी काम आएगी. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. इट्स टाइम टू चेक इन.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग टाइम राइट नाउ 7:08।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: If this was a part of your bucket list, I'm sure it was if you're into cars, highways, castles, and of course, all the famous things, hashtag Oktoberfest. Then Germany, I'm sure, is a part of your bucket list as well. I can't wait. I can't wait to experience Germany ki sardi. Filhal, ye hai Big Thrill. Main hu Mansi, and yahan par was your chance to check in. And shortlist hone ke liye ek registration, ek message karna bahut zaruri hai. And that too, just a WhatsApp message. Bahut sare messages ke beech, filhal randomizer ne dhoond nikala hai Mr. Jatin ko. Hi, Jatin.
2: Hi, Mansi. How are you?
1: I am good. How are you? Mujhe speaker se hata. हेलो
2: यस मानसी,
1: ये आप क्या सबको सुनाना चाह रहे हो?
2: नहीं, मेरी वाइफ साथ में।
1: ओह अच्छा, मतलब तो लड़की का फोन आया तो स्पीकर पे लो वाला किस्सा हो गया।
2: नहीं नहीं, मैं वाइफ
1: अच्छा,
2: साथ में।
1: हाँ मैं समझ गई, वाइफ साथ में है तो वाइफ ही बोलती है कौन सी लड़की का फोन है, स्पीकर पे लो। मैं समझ गई हूँ आपकी दुविधा सर। फिलहाल ये देखो, जगजीत साहब ने कहा भी है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जतिन जो छिपा रहे हो। फिलहाल जतिन, जर्मनी की मैं बात करूं, इट्स अ प्लेस व्हिच इज नोन फॉर हाईवेज, फॉर सम ग्रेट कार्स, एंड ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर एट द ऑक्टोबर फेस्ट। तो इन तीनों में से आपका मोटिव क्या है जर्मनी जाके, आप ज्यादा क्या करना चाहते हैं?
2: एक्चुअली मेरा मोटिव तो अक्टूबर फेस्ट एंजॉय करना
1: मैं
2: ही है।
1: समझ ही गई थी, आप हो देवदास, हमको किसी के गम ने मारा। आपको संभाल के रखना पड़ेगा अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करते हो, तो कहीं गुम ना हो जाओ। फिलहाल जाते
2: नहीं नहीं बिल्कुल।
1: लास्ट टाइम ट्रैवल कब किया था?
2: मैं एक्चुअली 2023 में यूरोप जा चुका हूँ, ऑस्ट्रिया और बुडापेस्ट।
1: वेरी नाइस, वाइफ भी गई थी? सिंगल तो अलग ही मजा होता है ना, स्पीकर से हटा लो फंस जाओगे। फिलहाल गिविंग यू अ चांस, बहुत बढ़िया, गिविंग यू अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का। आई विल सी आपकी जीके जर्मन नॉलेज कैसी है, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन। अगर आपने सही जवाब दिया, वेरी सिंपल, आप हो जाएंगे शॉर्टलिस्ट। ठीक है जतिन, ऑल द वेरी बेस्ट।
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Alright, Jatin, आपका question है, which massive Gothic cathedral took over 600 years to complete and is one of Germany's most visited attractions or sites? Option है the Cologne Cathedral, या फिर option B Notre Dame, option C St. Peter's Basilica. चैट जीपीटी अभी आपका बफर हो रहा है। ए कलोन कैथेड्रियल, बी नॉट्र डेम, सी सेंट पीटर्स बेसिलिका।
2: कैथेड्रल।
1: दे दिया चैट जीपीटी ने जवाब, पर वो 100% करेक्ट नहीं होता है। बहुत मजा आने वाला है आपके साथ, बहुत मजा आने वाला है। रियली होप कि आप ट्रैवल करो, क्योंकि आप बड़े मजेदार हो। फिलहाल आप हो गए शॉर्टलिस्ट जतिन, अब अगला स्टेप होपफुली यही हो कि जतिन थोड़े से झूठ और बोलो, हम जर्मनी जा रहे हैं। बट फिलहाल फिंगर्स क्रॉस, कंग्रेचुलेशंस, शॉर्टलिस्ट होना भी बड़ी बात है, इतने मैसेजेस मिस हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अब बता दो, चैट जीपीटी से पूछा था ना?
2: नहीं
1: झूठा, चलो
2: मेरी कसम,
1: अपनी खाओ भैया, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा तो कोई प्लानिंग ही चल रही है। फिलहाल यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय जतिन।
2: Bye.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: किसी दिन अगर आप मुझसे मिलोगे ना, मैं आपको अपने डीएम्स पढ़वाऊंगी। मतलब इतना एंटरटेनमेंट है मेरे डीएम्स में। अभी अभी मैंने एक मैसेज पढ़ाया वाली वो एंजॉयिंग दिस गाना, हेलो दीदी, फिर ब्रैकेट में लिखा है सिस्टर, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टेक लाइसेंस इन द यूएई। मैंने सुना है ये पीएचडी करने जैसा है। मैं लिखना चाहती हूँ कि ब्रदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुक्के में मिल गया है मुझे।
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अब ऑनेस्टली लाइसेंस तो है मेरे पास। गाड़ी चलाना, यू नो, इट कम्स विद प्रैक्टिस। आई एम अ गुड ड्राइवर एंड आई विल बिकम द बेस्ट वेरी वेरी सून, बट देयर इज वन थिंग दैट आई एम वेरी वेरी गुड एट एंड दैट इज गेटिंग यू सम fantastic offers when it comes to cars. Now you can lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999, that is 1,999 per month for a 12-month plan, and these are fantastic cars. Do visit selfdrive.ae and get in all the details. Terms and conditions do apply.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, ये है Big Thrill, मैं हूँ मानसी. एंड कभी कभी ना नेकी करना, किसी का भला करना भारी पड़ जाता है. कल मैंने अपने कॉलिग से बोला, यू नो व्हाट, आई विल ड्रॉप यू होम बिकॉज ऑफकोर्स उसका घर का जो रास्ता है वो मेरे घर के रास्ते में आता है. तो उसे तो मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब 8 से 9 मिनट का रास्ता था. आई ड्रॉप दैट पर्सन. बट उसके बाद मैं अपने घर ही नहीं पहुंच पाई. जब मैंने शुरू किया था तो वेज दिखा रहा था 16 मिनट. 10 मिनट बाद 60 मिनट हो गए थे. मतलब ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है. लोगों ने मुझे कहा वेज डाउनलोड करो, वो ज़्यादा ईजी है. गूगल मैप्स आधे लोग कह रहे हैं वो ज़्यादा आपको ईजीली नेविगेट करवाएगा. तीसरे जो धुरंधर्स हैं वो कह रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों को साइड रखो, एग्जिट साइंस देखो. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा वास्तु हिल रहा है. वास्तु पूरा बिगड़ गया है मेरा.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: बर्फ का तो नहीं पता, लेकिन अच्छा मौसम इज ऑलमोस्ट हियर। टुमारो ऑफिशियली मार्क्स द एंड ऑफ यूए समर्स। पैट योरसेल्फ, वी मेड इट थ्रू समर्स। फिलहाल इट्स 33, लो जाएगा अराउंड 31।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Europe? Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: You know, पूरे साल हम भी फेस्टिव सीजन का ऐसे ही इंतजार करते हैं. तो फिर आओ एंड फाइनली द फेस्टिव सीजन इज हियर.
2: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: एंड विद द फेस्टिव सीजन कम्स द फेस्टिव शॉपिंग. दिस नवरात्रि एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन ऑन द 26th ऑफ सितंबर सुबह 10 से रात 10 बजे एट द अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड JLT मेट्रो स्टेशन. You can shop from 45 plus exhibitors featuring fashion, saris hai, jewelry, home decor. Lots of fun, lots of food, बच्चों के लिए activities, exciting competitions, plus the UA's got talent season 8 का grand finale and chances for you to win staycations, dinner vouchers. Entry बिल्कुल free है, parking भी free है, गाड़ी चलानी नहीं आती है. तो it is right outside the JLT metro station. This is brought to you by Kids R Us with Divalicious Beauty Salon, jewelry partner Biani Jewels, and this event is made large by us. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: big thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी एंड द बिग न्यूज इज इट्स अ ब्रांड न्यू टर्म एंड इट डिजर्व्स अ ब्रांड न्यू जेटोर. ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी विद जेटोर्स latest unbeatable offers. Wait on them or 0% interest, plus you get a free service package and enjoy a 1 million kilometer warranty. EMI starting from just 966 dirhams per month. So aapki dream SUV could be closer than you think. Aaj hi visit kijiye Jator showrooms. They are across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Al Ain, Fujairah. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. Terms and conditions do apply.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: पिछले दो दो क्या पिछले
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: आशिफानी मत होश की ये जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! Khush hua!
3: Three things that are white in color and you can eat.
4: खीर
3: पनीर दूध. वेरी नाइस. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
4: हाँ हाँ बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
3: हाँ बना तो नहीं रहे हो ना मुझे फिलहाल. तीन ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
4: वॉचिंग क्रिकेट ओवर द फोन एवरी टाइम.
3: ओए टाइम खत्म. थ्री रोमांटिक निकनेम्स जो आपने अपनी डार्लिंग वाइफ को दिए हैं.
4: जंबो, जानू,
3: सोना. ओए सो क्यूट. तो करते हो क्या, मेरे शूना ने खाना खाया, मेरा शूना गुस्सा है?
4: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ.
3: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
4: है? वो है नहीं, वो नाम से, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
3: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए. टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड बट
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM to 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The big chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Aap sun rahe hain Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Aaj din chadhya tere rang varga. तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा है किरना दे विच नशा जिहा किसे छीमे सप दे डंग वर्गा अज दिन चढ़िया